0: लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम

0: पे क्यूआर संगे।
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम

तैयारी कक्षा संचालन करने ऑपरेटर का लाइसेंस सम्म को सहजीकरण को व्यवस्था गरीब विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी विशेष व्यवस्था करने आवश्यकता अनुसार होस्टेल को व्यवस्था डिजिटल प्रविधि कक्षा संचालन करने उत्कृष्ट रोजगारी को व्यवस्था जब बेसिस में कक्षा संचालन करने नोट शुरू में भर्ना होने 20 जना विद्यार्थी विशेष छूट छात्रवृत्ति को समेत व्यवस्था कर विस्तृत जानकारी का यूनिक इंस्टीट्यूट अफ टेक्नोलॉजी यूटेक नेपालगंज 18 कारकांदो बांके सिद्धार्थ होटल र शिक्षा सिंचाई कार्यालय देखि पूर्वपट्टि थप जानकारी का संपर्क मोबाइल 98484935 98582339 98584072 र 98448161175 सिप सिकौ आत्मनिर्भर बनाऊ प्राविधिक शिक्षा सफल भविष्य को आधार।

0: 4881037 वेबसाइट www.collegeofallied.com गुणस्तरीय शिक्षा व्यवहारिक सिकाई र उज्जवल भविष्य को भरपर्दो आधार
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज

नेपाल पे क्यूआर में आबद हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: सम्पर्क नम्बर 081-534-0017 081-536-275 स्वास्थ्य क्षेत्रमा सफल भविष्य निर्माणको सही आधार

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल के अपने क्यूआर।

0: क्यूआर संगे
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

नेपाल पेटीबार में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: भेरी एफएम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाट
1: बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा ईरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति
2: बुलबुल बुलबुल बुलबुल।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी